आयोजक दिदी बहिनी मीडिया हाउस स्टार एटी इवेंट तथा पार्टी प्यालेस वसुंधरा काठमांडू समय 2084 भदौ 20 गते शनिबार बिहान 11 बजे देखि अपराह्न 4 बजे सम्म। सम्पर्क नम्बर 9576301।

0: रेडियो रेडियो दीदी बहिनी को समय सूचक हो।
1: अहिले बिहानको ठीक 5 बज्यो।